0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89, we're playing your song.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
3: City
6: FM 89. मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे. तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैस 5G, हमारी सुपर पावर.

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
2: City FM 89.
3: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
3: बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्ट पार्क है ना?
4: इन्वेस्ट पार्क?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
6: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैज 5G हमारी सुपर पावर.
7: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें.
8: City FM 89, we're playing your song.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
5: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे. तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैस 5G हमारी सुपर पावर.
6: पेपा कार्ड है
7: तो फायदा है.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
1: City FM 89.
2: Pakistan bhar ki tarah Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwaye aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dale.
3: Khair to hai, itni jaldi mein kahan ja rahi ho?
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
3: फुली बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
4: इन्वेस्ट पार्क?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
6: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
7: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G हमारी सुपर पावर।
8: वन नेशन, वन स्टेशन, वन

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
1: City
3: FM 89.
4: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ Jazz 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. Jazz 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो. Jazz 5G आपका, मर्जी भी आपकी. Jazz 5G, हमारी सुपर पावर.
5: One nation, one station, one sound.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
1: City FM 89,
3: your drive along companion.
1: You're listening to
4: Future Sounds.
3: Future Sounds.
4: Vibe with us, your music.
5: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: It's 8:30 PM. We are
1: City FM 89.
2: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे। तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैस 5G हमारी सुपर पावर।
0: सिटी 89 यू आर लिसनिंग टू
3: फ्यूचर साउंड्स।
4: फ्यूचर साउंड्स,
3: स्टे फ्रेश, स्टे लिट।
5: New music drops right here.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
2: City FM 89
3: On the dial. You're listening to
4: Future Sounds.
5: Future Sounds.
6: Stay fresh, stay lit.
7: New music drops right here.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे। तो अब जैस 5G से जो चाहे करो, या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैस 5G, हमारी सुपर पावर।
3: You're listening to City FM 89.
5: We're playing your song.
1: You're listening to
6: Future Sounds.
7: Future Sounds.